कन तो ही या खरा ना मावे हाँ मौको एंटी के कुमेलो हीरियारे फगाट मले खातरिया सिंकोरा या वो सीसुं निकन रोटी का उशाका वा टिमिंकु अवर टेक्निका दे ग्रासियोन रोजारियो निकला ब्रेकेटर निगुआ सन्जो अगोस्तो बुआ नोइटे ने बॉन फिनाल सेमाना नोरोवायो